0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवही एफएम दिवही एफएम दिवही नाइक दिवही नाइक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवही एफएम
2: लवे कफ बहो लवे

0: अस्सलाम वालेकुम। नोधे के मेगाहर्ट्ज़ दिवे एफएम के मेंदुर कुरी एगार गड़ी थीरी हुगे खबर है कि मैं बतल कुरी अलगन फातमत समा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गेदर बिना कुरमा माली तनवस कन्ने मी हुनन एही वुमा गेदर वलम बैंक लोन दिबेने फसे है इंतजाम तम हमजसम के मसा के कुरमुन दाकमा रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइजुविदार वेजे एमनिक फान मिफदान विदाळवी रयितुंगे अडु प्रोग्राम के फसवन एपिसोड का वाकफुल दकवमुं बोहिया वहकम के कंबड बुंतका गुलिगे रईसुल जमहूरिया विदाळवी सरकारुं मिफार हुळवा लाफवा हाउसिंग स्कीम की देफु फेन्ना इंसाफ फेर स्कीम का वानिकम के यकीन कन एबो एकमा एमएमओ राज्य के मियाहर के एमएमओ इंजीनियर के अवार्ड डॉक्टर फुरकान इब्राहिम अली बिज्जे एमएमओ इंजीनियर कंग अवार्ड अरवा फवनी राज्य के तरक्की का इंजीनियर के दौर फाहा कों एकमते इंजीनियर्स अवार्ड दिन मपे विरस्मियातु का मिरस्मियातु शरफ फिर को देवी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइजु मी इंजीनियरिंग दायरा या खास को के राज्य का देम फिशी फुरतम अवार्ड मधु वसीले तहकायकु राज्य कुरिया गेंगोस तरक्की के लणुदंड तं हासिल कुरुमुका इंजीनियरों के दावरु पोडुकमा बिनारा केदोरवेरिकमा उम्रानी तरक्किया बेहे वसीर डॉक्टर अब्दुल्लो मुत्तलिब विदाल वेचे राज्य का फुरतम फहर बेवि इंजीनियरों के एवोर्ड दिनुम के रस्मियातु का वाहक दक्कवमुं बिनारा केदोरवेरिकमा उम्रानी तरक्किया बेहे वसीर विदालवी दिवेहि इंजीनियरु नकी पयन लक्वामी गोतुम बला कन्न फेमवर रंगळु बाइकमा केरिते गुरुआना ओन गुलुमकी वकी मुबारातका गुलिफा ओन कमे नून कमशा मुबारात फहुवस गुरुआना हितहु गोय लोबि देमेहटुमा रईसुल जमहूरिया के नायबु अलुस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफ गोवाल वैफी एमन खान मिकमा बार अलवा गोवाले वी केरित गुरुआन केवुमगे तिरी सवन कौमी मुबारा फेशमुगे रस्मियातु शरफिर को देवा देके विवाह कफुलुगा रईसुल जमहूरिया के नायब अलुस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफ मुबारा फेशमुगे रस्मियातु का देके वाहक फुलु बिना कुरेवे कुरान के इल्म उंगेनु मुगे मुहिमु कमा एमनिक फान वाहक फुलु फट्टवमु विदाळवी कुरान के इल्म उंगेनु मकी कोमे मुस्लिमे के मच्चंग वे वाजिबे कमा केरित कुरवाना बहे फंसास अग गोयपे बिना कुरुम के मसक्य मिहार वेस कुरिया ताकमा इस्लामी कंततका औकाफा बहे वजीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली सईद विदाल वेजे वजीर मिहम विदाल वी केरित कुरवान केवुम के तिरिस अवन कौमी मुबारा रस्मी को फिशम पे वि रस्मियात का वाकफुल दकवमु इस्लामी कंततका औकाफा बहे वजीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली सईद विदाल वी रईसुल जमहूरिया के अमाजकी मुड़ी राज्य केरित कुरवाना बहे गोफिता फेतुरी गेंदी उनकमशा एकमटका इस्तामी कंतका बेहेवु सारायंगी नमसके तके कुरमुंदाकमा राज्य के व्यापारी वेरिना कुंफुनिता कुंदेनी दावत के मसकतंग ही तेरकम फोर को देन जहे कमां इस्तामी कंतका अवकाफा बेहे वजीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली साइद विदाल वेचे वजीर मिहम विदाल वी जमियतु सलफ के फरातुम बावा दुआतुन के मजदीहु के देवन आहरी बदल वुंफिशुम के रस्मियातु का वाहक फुल दकवमु बोहिया वेकमा गुलुंहुरी दुवस्वेफा वामा सलतां हालु कुरुमा मीगे फहुं फोनवानी ऑफिस फॉर सिविल राइट्स कमा बिनारा केतुरवेरिकमा उम्रानी तरक्किया बेहे वजीर डॉक्टर अब्दुल्लो मुत्तलिब विदाल वेजे वजीर मिहम विदाल वी बोहिया वेकमा गुलुंहुरी मसल तका कुले गोतुन सोशल मीडिया का हिस्सा कुले वी पोस्ट एका बिनारा केतुरवेरिकमा उम्रानी तरक्किया बेहे वजीर डॉक्टर अब्दुल्लो मुत्तलिब विदाल वी बोहिया वही कमा गुले गोतुं एकी सबब तका हुरे हालु नुए दुवस वेफावा मसला तहुगा सीधा एवु जारें मीगे फहुं गोए कंडा नाला निम्मा फवा कमा मी खबर आए की मिगडी का दिवे फेमुं दन्न मुंगे खबर दन्नवाने मुनी देन दिवे फेमुं खबर दन्नवा देनी मी दो हवीरु हतरी चहायरु खबर अडसवीते शुक्रिया
1: दिवे ही एफएम

0: ईशा सुवाने कुरंता
1: कोब्बला
0: दिवेहि बहुगा सुकुं कुरे वेया कुरता की कोबा
2: अलिफु सीनु नूनु ता शवेन
0: रंगळु फेमवेरुं एमे मैक को बुनाने की हिने
2: नाने फुलफिलवो
0: वरर रंगळु वेहेता फेन्नेगु मे बुनम की कोबा
2: लिबे फुरसत के बेनुं हेफु माडु कोब्बला की कुरं कुरा सुवाले तमे
0: मि तैयार वनी दिवेहि एफएम गेनस्ते शवेनि प्रोग्राम
2: शवेनि प्रोग्रामे दिवेहि बहुगे सुवालो अन्ना ಕೊಂಗನ ಕೊಣ್ಣನಿ
0: ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರು ಅದಿ ಹೊನಿಹಿರು ದುವಹೆಗೆರೆ ಅಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಹುಗ
3: ಶವಿಯನ್

0: सा से बाय लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठना बिठना लाऊन ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
2: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के निस्ते आ देरु में
0: को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधे बुदा दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप क्या
4: Version 2.0
5: Version 2.0